सब सुरती मिल सुरत कमाई सब कीमत मिल कीमत पाई ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाई कहन न जाई तेरी तिल वड्याई सब सत सब तप सब चंगियाईया सिद्धा पुरखा किया वड्याईया तुद विण सिद्धि किने ना पाईया कर्म मिले नाही ठाक रहाईया आखण वाला क्या वेचारा सिफती भरे तेरे भंडारा जिस तू देहे तिसे क्या चारा नानक सच सवारण हारा आसा महला पहला आखा जीवा विसरै मर जाओ आखण औखा साचा नाओ साचे नाम की लागे भूख उत भूख खाए चलिए है दुख सो क्यों विसरै मेरी माए साचा साहिब साचा नाए रहाओ साचे नाम की तिल वड्याई आख थके कीमत नहीं पाई

रहाओ। हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास। हर हर नाम मिलै त्रिपतासा, मिल संगत गुण परगास। जिन हर हर हर रस, नाम ना पाया ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन धुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सत संगत, जित हर रस पाया। मिल जन नानक नाम परगास। राग गुजरी महला पंजवा, काहे रे मन चित वह उदम। जा आहर हर जियो परया, सैल पत्थर मैं जंत उपाए। ताका रिजक आगे कर तरिया।

राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम अगम अपारा सब त्यावै सब त्यावै तुद जी हर सच्चे सिरजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावा।

है जो सेवा है दुध जी जन नानक तिन कुर्बाना। हर त्यावह है हर त्यावह है तुद जी से जान जुग में सुखवासी। से मुकत पए जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी। जिन निरपहो जिन हर निरपहो त्याया जी तिन का पहो सब गवासी। जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी। से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी।

तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जेवड अवर ना कोई। तू जोग जोग एको सदा सदा, तू एको जी तू निःचल करता सोई। तुद आपे पावै सोई वरतै जी, तू आपे कर है सो होई। तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सब सह का जानोई। आसा महला चौथा, तू करता सचियार मेंढा साई। जो तौ पावै सोई थीसी,

पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दय मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास निवरी है। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जू।

ताकौ कर पाहन अनुमानत महामूड कश भेद न जानत महादेव कौ कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह पेव।

देखा, सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुज तव सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हवै मरे।

हे सब काला दुष्ट अरिष्ट तरे तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे नहर हो ताके ताप तनक मह हर हो रिद सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह।

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईयां।

साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया, कर शांत सुख मन आए वसया, जिन इच्छा सब पुजाइया, सदा कुरबान कीता गुरु विटहाओ।

सासंगति। बोलो जी वाहे गुरु वाहे गुरु। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वाशुभवती पाचे दसवीं प्रथम भगवती समर कहे गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास हुए सहाय अर्जुन हर गोबिंद सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याय सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कारण उन्हें दयावताए सब थाई हुए सहाय दसवें पाचिया गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई हुए सहाय दसा पाची के पितरात्मक स्वरूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब के पारदार अंतर के खालसा बोलो जी वाहे गुरु। आप जी दे पांच प्यारी चार साहबजादे चाली मुक्त हटियां जपियां तपियां जिन्हें नाम जपया वन चक्या देख चलाई ते वाहे देख लिटकी तना प्यारे सत्यारा नी कबाई दे अंदर के बोलो जी वाहे गुरु। जिन्ना सिंगा सिंगनिया धर्म हे सी दिते बंद बंद कटवाए कुपरियां लवाइया चरखियां चढ़े आ रहे नचाए गए गुरुद्वारे सेवा से कुर्बानियां की धर्म नहीं आ रहा सी किसी तरीके संघ भाया तिना ही कमाई का ध्यान रखे बोलो जी वाहे गुरु। पंजाब गुरुद्वारा का ध्यान रखे बोलो जी वाहे गुरु। प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे नाम चेताव है चेत आवण का सदकार सर्व सुख हो वह जहां जहां गुरु खालसा साहब चरियात देख देख की फतेह बृद की पहज पंथ की जी श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोलबाले बोलो जी वाहे गुरु। सिखा सिखी दान केस दान रैत दान विवेक दान विशाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब दर्शन स्नान चौकियां चंडे बुंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु। सिखा दा मन नीवा मत रुचि मत पद के राखे आप वाहे गुरु। गुरु की बनवाज पंद्रह सदा शायद जी गुरुद्वारा ननकाना साहब पंजा साहब होर गुरुद्वारे गुरु धाम जिन्हों तो आप जो पंथ में छोड़िया गया है उन्होंने कोई दर्शन की दात से संभाल दिता हाँ अपने खालसा जी ने बख्शो हे न्योटियां की ओट गुरु ने आसरिया दे आसरे गुरु धन धन गुरु दार जी दोए कर जोड़ करो अरदास तुत भावे ताने रास हे गरीब नवाज जी आपके चरण कावना चरदास दार जी आपने बख्शिश की है आपके चरण दार जी बाद पैदा कीर्तन दरबार सजे हैं इस वे संध्या समय जान के आपके चरण सोधार है रास्ता पाठ किधर कृपा करो हो भुलना चुका नहीं माफी बख्शो पढ़ी हुई बाणी सोध के सच कण प्रवान करो बाणी का भाव सारिया संगत हिरदय सारी कृपालता करो जी अगो तो शोध से पित्र बाणी चाली बल बुद्धि बख्शिश करो। आज इस खुशी आप दिन बख्शिया दाता पितरकड़ा आप शादी देगा तैयार करे हाथ नजार आप जी भोग लाओ शीत प्रसाद सत्संग की रचना लायक होवे जो जी सके स्वास स्वास आप जी का पितर नाम जप बख्शिश करो दतार जी दुखा कलेशा रोगों का नाश करो सुखा का प्रकाश करो देश प्रदेश रखा बख्शिश करो जी कृपा करो गरीब नवाज दतार जी आप दख्शिया दातों जो लंगर चुट सवारियां प्रवान करनी आपके जाना सेवा कर रहे सारे टहरिया सिंगा सिंगड़िया तंदुरुस्ती बख्शो चादी करो बख्शो अभी सदा इस तरह अपने चरना सेवा की भावना बख्शन बालता करो गरीब नवाज जी अमृत वे तो लैके दाते आई साफ संगतान जी आज दर प्रवान करो घड़िया लेके लाओ संगतान का दाते सिर पर पेटा प्रवान शुभकामना पूर्ण करो जी कृपा करो दार सिख कौम खालसा पंथ एकता सुभाग प्यार जी बख्शिश करके सतोज दास बख्शो चाना ना जोड़ो गुरबाणी का प्यार बख्शो हर मैदान दीवान फतेह बख्शियादा करो जी गुरु की बनवाज कृपा करो दार दूर दराज कार बैठी लाइव किता की सरवण करियां सारी संगतान जी हाजरिया प्रवान करो घड़िया लेके लाओ दतार आवे कृपा करी संगतान उदो बख्शे संगत आपके चरणा धन्यवाद करते हैं शुक्रिया अदा करते हैं बेहद माया ऑनलाइन गुरु घर गुरु घर सेवा संघा दर संगत माया पीता कर चरण प्रवान करो बशकर साहब जी कमाइया सबल करो घट वाद दार साफ संगत दिया शुभकामनावान सरबंध पूरी करो जी तार मेहर कर आओ सेवा प्रवान करो भुला चुका की माफी बख्शो पवित्र गुमनामी बख्श कर बरंद अज शाम के कथा की वासी आगा बख्शो रेंदे का सुवार के चरण तुरा दी बनाओ सही प्यारे मेरे दिन बनाव का नाम चिता नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने दरवाज पर वाहेगुरु जी का खालसा।

0: काम क्रोध अर लोभ मोह
1: वासु कर सब बल
0: सदा सुख मन वस दुख संसार खोवे गुरु नवनीत दरियाओ जन्म हम काल खतोव सो कहो टल गुर सेवी है एहने

सो प्रभु सिमर सदा दिन रात। जय प्रसाद तेरी पत रहै, गुर प्रसाद नानक जास कहे। जय प्रसाद सुने गुरनाथ, जय प्रसाद देखे बसमाद। जय प्रसाद बुल है मृत रसना, जय प्रसाद सुख सह जी बसना। जय प्रसाद हस कर चले, जय प्रसाद सपूर्ण फल है। जय प्रसाद परम गत पावे, जय प्रसाद सुख सहज समाव है। ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लग हो, गुर प्रसाद नानक मन जाग हो। जय प्रसाद तू प्रगट संसार, तिस प्रभ को मूल न मनो विसार। जय प्रसाद तेरा प्रताप रे मान मूड, तू ता को जाप। जय प्रसाद तेरे कार्य पूरे, तिस है जान मन सदा हजूरे। जय प्रसाद तू पावे साच रे मन मेरे, तू ता सिमरा। जय प्रसाद सब की गत होए, नानक जाप जपै जप सोए। आप जपाए जपै सो नाओ, आप गावाए सो हर गुण गाओ। प्रभु कृपा ते होए प्रकाश, प्रभु दया ते कमल विकास। प्रभ सो परसान बसै मन सोए, प्रभु दया ते मत उत्तम होए। सर्व निदान प्रभु तेरी माया, आप हो कुछ न किन्हों लाय। जित जित लाभ हो, तित लग है हर नाथ। नानक इन कह कछु न हाथ, सलोक अगम आगाद पर ब्रह्म सोए। जो जो कहे सुमुक्त होए, सुन मीता नानक मिल बंदा साध। जना की अचरज कथा अष्टपदी, साध के संग मुख उज्जल होत। साध संग मल सगली खोत, साध के संग बेटा विमान। साध के संग प्रकट सुज्ञान, साध के संग बुझे ब्रह्म नीरा। साध संग सब होतन वीर, साध के संग पाई नाम रतन। साध के संग एक ऊपर जतन, साध की महिमा बन कौन पुरानी। नानक साध के सुबह प्रमह सम्मानी, साध के संग अगोचर मिले। साध के संग सदा पर फुले, साध के संग आवे बस पंजा। साध संग अमृत रस पंजा, साध संग हुए सबकी रेन। साध के संग मनोहर बैन, साध के संग न कतहु तावे। साध संग अस्थित मन पावे, साध के संग माया ते भिन। साध संग नानक प्रभु सो प्रसन्न, साध संग दुश्मन समीत। साधु के संग महापनीत, साध संग किस सिव नहीं बैर। साध के संग न भिगा पैर, साध के संग नाही गुमंदा। साध संग जने परमानंदा, साध के संग नाही हो ताप। साध के संग तजे सब आप, आपे जन साध बढ़ाई। नानक साध प्रभु बने आई, साध के संग न कब होता वे। साध के संग सदा सुख पावे,

कबहु महा क्रोध विकराल, कबहु सर्व के हो तरवाल, कबहु होय बह बरदार, कबहु भिखारी नीत का सद, कबहु अब कीरत में आवे, कबहु पला पला कहावे, ज्यो प्रभ रख तिव ही रह, गुरु प्रसाद नानक सच कह, कबहु होए पंडित गरीब खियान, कबहु मोन तारी लावे ते आन, कबहु तट तीत स्नान, कबहु सिद्ध साधक मुख ज्ञान।

अष्टपदे निष्कंत राज विमान सो नरकपाति होवत सुवान जो जान मैं जो बनवंत सो होवत विष्टाकरंत आप सुको कर्म बंत कहावे जन्म मरबो जोन परमावे तन पूम का जो कर गुमान सो मूर्खंदा ज्ञान कार्य कर

आप उपदेश समझ आप आपे रचे सब का साथ आप की नो आपन विस्तार सब कुछ कहो करने हार।

संत का दुखी कित काज न पहुंच, संत का दुखी को ध्यान प्रमाई है, संत का दुखी उजड़ पाई है, संत का दुखी अंतर तीत होता, जो सास बिना मृत की लोथा, संत के दुखी की डट किशना ही अपन बीडा पे ही खाहे, संत के दुखी को अपन न रख न हार, नानक संत बाबता ले उबार, संत का दुखी इं बिललाए, ज्यो जल भी होन मछले तरफ डाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजा, ज्यो पाप के ई धन नहीं त्रापै, संत का दुखी छूटे केला, ज्यो बुझ्यो बुआड तिलखी तुमाही दुहेला, संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सद मिथ्या कहत, किरत निंद का तुरही पिया, नानक ज्योतिष पाव सोई थे, संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दुखी को दरगह मिल सजाए, संत का दुखी सदा से कहिए, संत का दुखी नाम न जिवाइए, संत के दुखी की पूजा न आशा, संत का दुखी उठ तले निराशा, संत का दुख न तृष्टा कोई, जैसा पावे तैसा कोई होए, पया कृत न मिटे कोई, नानक जान सच्चा सोई, सब कट तिसके होकर न हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभु की उस्तत करो दिन रात, दिशा ते आप सास गिरास, सब कुछ वर्त दिशा किया, जैसा करे तैसा को थिया,

भगत गुरु प्रभु की नित नीत। एक ओट एक आधार नानक मंगन प्रभु सर, प्रभु की दृष्टि महा सुख होए। हार रस पावे विरला कोए, जिन चखिया से जन तृप्ता ने, पूरन पुरख नहीं डोला ने सुपर परे। प्रेम रस रंग उपजय चाओ साध के संग, परे शरणान सब त्याग अंतर प्रगास अन दिन लिवलग। बटभागी जपया परसोए, नानक नाम रते सुख होए। सेवक की मनसा पूरी पही, सतगुर ते निर्मल मत लई। जन को प्रभ हो दयाल, सेवक नु सदा निहाल। बंधन काट मुक्त जन पया, जन मरण दुख भ्रम गया। इश्पुनी सरदा सपूरी, रव रहया साध संग हजूरी। जिसका साथ लिया मिलाए, नानक भक्ति नाम समाये।

क्यों विसरे जिन सब किस दिया सो क्यों विसरे जी जीवन जिया सो क्यों विसरे जी अग्न में रखे गुर प्रसाद गुबर लालक है सो क्यों विसरे जी व्यक्ति काटे जानव जन्म का टूटा गढ़ गुर

भगत पाए त्रिय संसार बिन भगती तन हसी शार सर्व कल्याण सुख नित नाम बूढ़ जद पाए विश्राम सगल दुख गहोत नास नानक नाम जप गुण दास उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मन तन अंतर हे सुआउ नेत्र हो वेख दर्श सुख होए मन विकसै साध चरण धोए भगत जना कै मन तन रंग बिरला को पावे संग एक वस्त दीजै करमय गुरप्रसाद नाम जप लय ताकि कहीं न जाए नानक रहे सर्व समाय।

फिर जा पशुपति। जब आकाश कृष्ण दृष्टि तब पाप पुन तब कहते होता, जब धारी अपन सुन सुमात तब बैर विरोध के संग कुमात। जाब इसका बन जहना जापत तब हर्ग सोग कोह किसे व्यापत। जब अपन आप अपर ब्रह्म तब मोह कहा किस होवत परम। आपन खेल आप वरतीजा नानक करने हर न दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त को किस को गनी।

कहत है। जब आप है आप अपनी जोत धरे तब कवन निंडर कवन कत डरे। आप नचले ताप करने हर नानक ठाकुर अगम्या पर। आप नसी सुख अपने आसन तह जान मरण कहो कहा बिनासन। जब पूर्ण करता प्रभ सोए ताव जम की त्रास कह हो किस होए। जब अभिगत गुजर ब्राविका तब चित्र गुप्त किस पूछत लिखा। जब नाथ निरंजन गुजर गे तब कौन छे कौन बंधन बदे। आपन आप ही चर्जा नानक आपन रूप आप ही ओ प्रजा। जह निर्मल पुरख पुरख पत होता

गुण गाय। मन अंतर विश्वास कर मनिया, करण हर नानक एक जनिया, जन लागा हर एक नाई, तुसकी आसन बिरथी जा।

अमृत जागी दृष्ट दर्शन पेखत उद्रत श्रेष्ठ चरण कमल जागे अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप तन सेवा सेवक प्रवान अंतर जामी पुरुष प्रधान

कष्ट पैदे, पूरे गुरु का सुनो उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख, सास ससगुरु गोविंद मान अंतर की तुर चिंद, आस अनित दया गोतरंग, संत जना की धूर मन मंग, आप छोड़ बेनती करहो, साध संग अग्न सागर तरहो, हर धन की भर लिहो भंडार, नानक गुरपुरे नमस्कार, खेम कुसुम सहज आनंद, साध संग भज परमानंद, नरक निवार उधारो जियो, गुण गोविंद अमृत रास पियो, चेत चेत भव नारायण एक, एक रूप जाके रंग अनेक, गोपाल दमोदर दीन दयाल, दुख भंजन पूरन कृपाल, सिमर सिमर नाम बारंग बार, नानक जी का है आधार, उत्तम श्लोक साध के बचन, अमलिक लाल एह रतन, सुनत कमावत होते उधार, आप त्रै लुक निस्तार, सफल जीवन सफलता का संग, जाके मन लग हर रंग, जय जय शब्द अनाहद बाजे, सुन सुन आनंद कृप प्रभु गाजे, प्रगटे गोपाल महान के माथे, नानक उदरे तिन गै साथे, सरन जोग सुन सरणी आए, कर कृपा प्रभु आप मिलाए, मिट गए बैर पे सबरेन, अमृत नाम साध संग लैन, सो प्रसान पे गुरुदेव, पूरन होई सेव की सेव, आल जंजाल बिगाड़ते रहते, राम नाम सुन रसना कहते, कर प्रसाद दया प्रभु तहरी, नानक निभि खेप हमारी, प्रभु की उस्तत करो संत मीत, साबेदान एकाग्र चीत, सुखमनि सहज गोविंद गुण नाम, जिस मन वसै सो होत निधान, सर्व इच्छाता की पूर्ण होए, प्रधान पुरख प्रगट सब लोए, सब ते ऊच पाई स्थान, बोहरन होवे आवन जान, हर तन खाट चले जान सोए, नानक जिस है प्राप्त होए, खेम शांत रेत नव निद, बुद्ध ज्ञान सर्व तै सिद्ध, विद्या तप जोग प्रभु ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान, चार पदार्थ कमल प्रकाश, सब कै मद सकल त्यो दास, सुंदर चतुर तत् गीता, समुद्र सीख दृष्टिता, एह फल तिस जन कै मुख भने, गुरु नानक नाम वचन मन सुने, एहो निधान जपे मन कोय, सब जुग महता की गत होय, गुण गोविंद नाम तनवाणी, सिमरत शास्त्र वेद बखाणी, सगल मतांत केवल हर नाम, गोविंद भगत कै मन विश्राम, कोट अपराध सत्संग मिटे, संत कृपा ते जमते छुटे, जाके मस्तक करम प्रपाए, साध शरण नानक ते आए, जिस मन वसै सुनै लाई प्रीत, तिस जन आवे हर प्रभ चीत, जन मरण तांका दुख निवार, दुर्लभ देहे तत्काल उधार,

सुनै सरांगणा के गा सुनै सेख पीर पातशाह सुनै अंधे पावे राहो सुनै हाथ होवे असगाहो नानक भगता सदा विगास सुनै दुख पाप का नास मन्ने की गत कही न जाए जेको कह पिछे पछताए कागद कलम न लिखण हार मन्ने का वह कन विचार ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोए मन्ने सुरत होवा मन बुद्ध मन्ने सगल भवन की सुध मन्ने मुह चोटा न खाए मन्ने जमकै साथ न जाए ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोए मन्ने मार्ग ठाक न पाए मन्ने पास्यों परगट जाए मन्ने मग न चले पंथ मन्ने धर्म सेती संबंध ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोए मन्ने पावे मोख द्वार मन्ने परवार साधार मन्ने तरे तारे गुरसिख मन्ने नानक पवे न भिख ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोए पंच परवान।

अमल गुण अमल बापार अमल बापारिया अमल पंडार अमल आवह अमला जाहे अमल पाए अमला समाहे अमल धर्म अमल दीवान अमल तुल अमल परवान अमल बख्शीस अमल निशान अमल कर्म अमल फरमान अमलो अमल आख्या ना जाए आख आख रहे लेवलाए आख वेद पाठ प्राण आख पढ़े करह विख्यान आख वर्म आख इंद आख गोपी तै गोविंद आख ईसर आख सिद्ध आख किते किते बद।

करारे गावन पंडित पण रखी सर जग जग बेदा नाले गावह मोनिया मन मोहन सरगा मच पे आले गावन रतन पाए तेरे अड़सठ तीर्थ नाले गावह जोत महाबल सूरा गावह खानी चारे गावह खंड मंडवर पंडा करकर रखे तारे सही तदनु गावह जोत पाव रते तेरे भक्त रसाले होर केते गावन से मैं चित ना आवन नान क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहेब सच

एका माई जगत ब्याई तीन चेले परवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान जिब तिस भावै तवै चलावै जब होवै फरमान ओह वेखै उन्हां नजर न आवै बहुता एहो वडाण।

अतीत है, अपीत है, तरमान है, निदान है, तरवर्ग है, असर्ग है, नील है, अनाद है, अजय है, अजाद है, अजन्म है, अपर्ण है, अपूत है, अपर्ण है, अगंज है, अपंज है, अचूज है, अचंज है, अमीक है, रफीक है, अतंध है, अबंध है, नरबूज है, असूज है, अकाल है, अजाल है, अला है, अजा है, अनंत है, महंत है, अलीक है, नरसीक है, नरलंब है, असंभ है, गम है, अजम है, अभूत है, अशूत है, अलोक है, अशोक है, अकर्म है, अपर्म है, अजीत है, अपीत है, अबा है, अगा है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है, प्रियंग प्रयाज छंद, नमो सर्व माने समस्ति निदाने, नमो देव देवे अपेखी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्व पाले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व पौणे, अनंगी अनाथे नरसंगी परमाथे, नमो पान पाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो पान पाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने, नमो नृत्य, नमो नाद नादे, नमो पान पाने, नमो बाद बादे, अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे परपंगी परमाथे, समस्ति बबूते कलंकन बिना ने कलंकी स्वरूपे, नमो राज राजेश्वम परम रूपे, नमो जो योगेश्वम परम सिद्धे, नमो राज राजेश्वम परम वृद्धे, नमो शास्त्र पाणे, नमो अस्त्र माणे, नमो परम ज्ञाता, नमो लोक माता अपेखी अपरमी अपोगी अपुगते, नमो योग योगेश्वरम परम जोगते, नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे, नमो प्रेत अप्रेत देवे सोतर्मे, नमो रोग हर्ता, नमो राग रूपे, नमो शाह चाहन, नमो पूप पूपे, नमो दान दाने, नमो मान माने, नमो रोग रोगे, नमस्तं स्नान, नमो मंत्र मंत्रं, नमो जंत्र जंत्रं, नमो इष्ट इष्टे, नमो

कृत करता दो उर्द अर्धं अघं ओघर्ता परम परम परमेश्वर प्रोष पालं सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालं अछेदी अपेदी अनामन अकामन समस्त प्राजी समस्तस्तामन तेरा जोर चाचरी छंद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेस हैं प्रियंक प्रयाज छंद अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे नमो सर्व माने समस्ति निदाने नमस्तु नरनाथे नमस्तु परमाथे नमस्तु अगंजे नमस्तु अपंजे नमस्तु अकाले नमस्तु अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो शाह शाहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोखे नमो सोख सोखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतं नमो सर्व पीतं नमो सर्व ज्ञानं नमो परम तानं नमो सर्व मंत्रं नमो सर्व जंत्रं नमो सर्व दृश्यं नमो सर्व कृष्ण नमो सर्व रंगे तरपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समसं परसीजे कृपालं स्वरूप।

जोन आद सेख देश और न भेज जाकर रूपरेख न राग जतर ततर दशा विशा फैल्यो अनराग नाम काम भी

अनामे तरभंगी तरकामे तरवरगन तरवादे अगंजे अगादे सुवन सर पागे सो सर्वा रागे तरभुक्त स्वरूप है अशेज है अशुद्ध है किरणकण प्रणास है पृथ्वी प्रवास है नरक प्रवाह है सदा सदा है भवक स्वरूप है प्रजक्त अनूप है नरक सदा है भवक प्रवाह है अनुक स्वरूप है प्रजक्त अनूप है चाचरी शांत अपांग है अनंग है अपेख है अलेख है परम है कर्म है अनाद है जगाद है अजय है अवय है अपूत है अदूत है अनास है अदास है अतंध है अबंध है अपक्त है विरक्त है अनास है प्रकाश है अनचिंत है सुनिंत है अलेख है अदेख है अलेख है अपेख है अटा है अगाह है असंभ है अगम है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजाद है चरपड़ छंद तपरसाद

जगते सुरह ब्रह्मंड सह खल खंड सह परते पर है करना कर है अजपा जप है थपा थप है कृता कृता अमृता अमृत है अमृता अमृत है करना कृत है अकृता कृत है तनी त्रित है अमतेश्वर है परमेश्वर है कृता कृता अमृता अमृत है अजबा कृत है अमृता अमृत है निर्णायक है कलकायक है बसंबर है कर्णालय है नृपनायक है सर्पायक है पापंजन है अर्गंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्व आत्म है आत्म बस है जस के जस है प्रियंक प्रयाज छंद नमो सूर सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो रासन तामसन शांत रूपे नमो परम तत्त अतत्त स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादम बभूते अलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आंसे नमो बांक बांके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे तरपंगी तरकाले अनंगी अकामे एक अश्री शांद अजा अला अप अब अपू अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम गा अटाह अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्म अपर्म अगंजे अलेखे प्रियंग प्रयाज छंद नमस्तल प्रणामे समस्तल प्रणासे अगंजल अनामे समस्तल निवासे नृकाम बभूते समस्तल स्वरूपे को कर्म प्रणासी सुधर्म बभूते सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी करीमल को निंदा समस्तल निवासी जाय बभूते गजाय कनीमे हरियं करियं करीमर रहीमे चतर चतर वर्ती चतर चतर भुगते सोयंब सुबन सर्वदा सर्वजुगते

डंडौत बंदन अनेक बार सर्व कला समर्थ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ सजन सच्चा पातशाह सिरसा हां दे साहो।

0: सच रह है सच्चा नाम प्यार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु प्रसाद संगत जीओ, गुरु दी अपार बख्शिश मेहरामत हुई है। अमृत वेले गुरु महाराज जी ने अपने पावन तख्तां ते प्रकाशमन हो करके खुले दर्शन दारे बख्शिश कीते। अलाही वाणी सुखमनी साहिब जी दे जाप नित नेम दीआं पंजां वाणीआं दे जाप होए। अरदासां बेनतीआं विच आप जीआं संगतां ने अपनीआं हाजरीआं लगवाईआं। उपरंत पावन पवित्र हुक्मनामा साहिब बड़े प्यार सत्कार दे नाल सरवण कीता है जी। सो गुरु महाराज कृपा करन आप समूह संगत ते अपना रहमत भरिया बख्शिश भरिया हाथ रखते हुए चढ़ती कला दे दात दरों कदों गुरु सिखी जीवन नाम दियां दातां सेवा दियां दातां बख्शिश करके नवाजन जी। सुआव साध संगत जी हुण आसा जी की वार जी हाजस कीर्तन का समा होया है। साढ़े बहुत ही सत्कार योग भाई साहब भाई हरभजन सिंह जी लहरी जी तिना का समूह जथा आप संगतां नूं अलाही बाणी आसा जी की वार जी हाजस कीर्तन 8:30 बजे तक सरवण करवाणगे। प्यार सत्कार के नाल सरवण करिए जी। वाहे

सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करणे सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फुरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुद आख्या लख करोड़ सच्चे सप्तान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच त्याय सच जो मर जमे सो कच नि कच महला पहला।

0: सेवक सेवा कर्म चढ़ाओ निरंजन मंचाओ सिखी सिख्या गुरु विचार नगरी करम लंघाए पार कोलू चरखा चक्की चक थल वारूले बहुत अनंत लाटू मां दाणिया अनगा पंखी पौंदिया लै नसा सूए चढ़ पवाइये जन नानक पौंदिया गणत न अंत
1: मंत्र वाहे सोए पय कृतन च सब कोई नच नच हसे चले सिर उड़ न जाई सदना होए नचन कुदन मन पचाओ नानक जिन मन पाओ।

0: जति सदा वह जुगत न जाने छट पह कर बार सबको पूरा पे हो वह घट न कोई आख पद परवाना पिछे पाई है ता नानक तोलिया जापे महला पहला
1: सोजू नानक आस्था विखे सोए सब निशाला मारिया करता करे सोए अगे जात न जोर अगे जियो न में जिनकी लेखे पद पवे चंगे से ही के पौड़ी तुर परम जना खुद पाया।

संध्याबाधंग सिल पूजल बगल समाधंग मुख झूठ विभुखण सारंग त्रैपाल तिहाल विचारंग गलमाला तिलक ललाटंग दोती बस्त्र पाटंग जय जान ब्रह्म कर्मंग सफ हो कर निश्चो कर्मंग।

ना ही तुटै ना मल लगे ना ही उजलै न जाय। तन सो मानस नानका जोगल चले पाय। चौंकड़ मुलन आया बह चौंके पाया। सिखा कन चढ़ाइया गुर ब्राह्मण।

रंग हसे रंग रोवे चुप पी कर जाए परवाह नहीं किसे केरी बाज सच्ची नाए दरवाटे ऊपर खर्च मंगा

जास जपत कई बैकुंठ वास, जास जपत सुख सहज निवास, जास जपत एह अगन ना पोहत, जास जपत एह काल ना जोहत, जास जपत तेरा निर्मल माथा, जास जपत सगला दुख लाथा, जास जपत मुश्किल कछु ना बने, जास जपत सुन अनहत तुने।

सहजे ग्रह मह सहज उदासी, सहजे दुबिदा तन की नासी। जाके सहज मन भया आनंद, ताको भेटिया परमानंद।

पुत्र कलत्र कुटुंब संग जुरिया भोजन अनेक प्रकार बहु कपरे सर पर गवन करहेंगे बपुरे कवर।

गति, जो इस मारे तिसका आया गनी, जो इस मारे सो नहचल तनी, जो इस मारे सो वड भागा, जो इस मारे सो अन दिन जागा, जो इस मारे सो जीवन मुक्ता, जो इस मारे तिसकी निर्मल जुगता।

गौड़ी महला पंजवा बिन सिमरन जैसे सर्प आर जारी त्यों जीव है साकत नाम बिसारी। एक निमख जो सिमरन मह जिया कोट दिनस लाख सदा थिर थिया रहाओ बिन सिमरन।

राम बिन सिमरन जैसे सींग छतारा, बोलहे कूर साकत मुख कारा। बिन सिमरन गर्दब की न्याई, साकत थान परिष्ट फिराही। बिन सिमरन कुकर हर काया, साकत लोभी बंद न पाया। बिन सिमरन है आत्म काती, साकत नीच तिस कुल नहीं जाती। जिस पया

हर की प्रीत सदा संग चाले, दयाल पुरख पूरन प्रतपाले राओ। बिनसत नाही छोड़ न जाए, जै पे खां तह रहया समाए। सुंदर सुगड़ चतुर जी दाता, पाई पूत पिता प्रभ माता। जीवन प्राण आधार मेरी रास, प्रीत लाई कर हृदय निवास। माया सिलक

विसाहु दान, भरोसा दान, दाना सिर दान, नाम दान, श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन स्नान, चौंकियां झंडे बुंगे, जुगो जुग अटल धर्म का जयकार। बोलो जी, सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत दे राखे आप वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सहाई दतार जीओ, श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारे गुरधाम, जिन्हां नूं पंथ तो विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार, सेवा संभाल दा दान, खालसा जी नूं बख्शिश करो। हे निमाणियां दे मान सतगुरु, नितानियां दे तां नियोटियां दे ओट, गुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह वाहिगुरु, दसों पातशाह की आत्मक जोत, धन धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी, आप जी का पावन पवित्र फुरमान है, लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुरु नदर करे, निमख एक हर नाम दे, मेरा मन तन शीतल होए। दे मां वाक अनुसार गरीब नवाज आप जी ने कृपा कीती, अज आप जी के हजूर काका हर सिमरन सिंह सिद्धू, सुपुत्र सरदार दलजीत सिंह सिद्धू, बीबी गुरप्रीत कौर सिद्धू अते बच्ची नैन्सी लियो, सुपुत्री गैरी लियो अते हैलन लियो, सच्चे पातशाह जी सुभाग जोड़ी दे आप जी के पावन दरबार अंदर गुर मर्यादा अनुसार आनंद कारज होए। गरीब नवाज आनंद कारज की मर्यादा नभाउंदिआं बेअंत भुल्लां हुई आप जी ने खिमा कर देने अगे तो सावधानता बख्शिश करके नवाजना सुभाग जोड़ी दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखना, ग्रिस्त धर्म दियां खुशियां झोली विच पाउणियां, रहमतां करनियां, सदा अंग संघ वर्तना, सच्चे पातशाह जी अपने चरण कमलां दी प्रीत और प्रतीत बख्शिश करके नवाजना दोहां परिवारां नूं आपसी प्रेम प्यार भावना दी दात, इतफाक दी दात बख्शिश करके नवाजना, अपने चरण कमलां दी प्रीत बख्शिश करना, गुरसिखी जीवन बख्शिश करना, चढ़दी कला बख्शिश करके नवाजना। सतगुरु जी इस वक्त सुभाग जोड़ी वालों आप जी नूं सुंदर पोशाके भेट कीते गए ने, आप जी ने अंगीकार करना, लोक परलोक पड़दे खजने बख्शिश कीते भंडारियां दे विचों पंचामृत कड़ा प्रसाद दी देग हाजर है, दर प्रवान होवे परवान होया प्रसाद संगत विच वरते जो जी शके, सो आप जी का पावन पवित्र नाम सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु जपे। गरीब नवाज सच्चे पातशाह जीओ, बेअंत संगता ने आप जी के पावन पवित्र दरबार दियां हाजरियां भरियां, तिल फुल भेटावां माया आप जी के चरणा विच अर्पण कीती, समूह संगत दियां हाजरियां भेटावां माया सफली करनी, दरों घरों चढ़ दियां कला बख्शिश करके नवाजना। गरीब नवाज दर आई संगत नूं कृतार्थ करदे होए पावन पवित्र हुक्म बख्शो जी, हुक्म ते चलण दी मत बुद्ध प्रदान करो, अखरवाद घाट भुल चुक माफ करनी, सरबत दे कारज रास करने, सही प्यारे मेल जिन्हां मिले आप जी का नाम चेता वै, नानक नाम चढ़ दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला।

दर्शन भेटत साधका, नानक गुण गाई सब किछ तुम ही ते हुआ। आप बणत बनाई दर्शन

माया मोह मेरा प्रभ की ना पे परम भुलाए मन मुख कर्म करह नहीं बूझह बिरथा जन्म गवाए गुरबाणी इस जग मह चानन कर्म वसै मन आए मन रे नाम जपो सुख होए गुरपुरा सा लाही सहज मिले प्रभ सोए रहाओ परम गया पौ भाग्या हर चरणी चित लाए गुरमुख शब्द कमाई है हर वसै मन आए कर महल सच समाई है जम काल न सकै खाए नामा छीम्बा कबीर जुलाहा पूरे गुरते गत पाई ब्रह्म के बेते शब्द पछाण होमे जात गवाई सुर नर्तन की बाणी गाव है कोई न मिटे पाई दैत पुत कर्म धर्म किच संजम ना पड़े दूजा भाव न जाने सतगुर भेटिया निर्मल होवा अनगन नाम वखाण एको पड़े एको नाम बूझे दूजा अवर न जाने खट दर्शन जोगी सन्यासी बिन गुर भरम भुलाए सतगुर से वह ता गत मित पाव है अर जियो मन वसाए सच्ची बाणी स्यो चित लागे आवण जान रहाए पंडित पढ़ पढ़ वाद वखाण है बिन गुर भरम भुलाए लख चौरासी फेर पया बिन शब्द है मुक्त न पाए जानाओ चित ता गत पाए जा सतगुर मेल मिलाए सतसंगत मह नाम हर उपजय जा सतगुर मिले सुभाए मन तन अर्पी आप गवाई चलना सतगुर पाए सद बलिहारी गुरी अपने विटहु जे हर सेती चित लाए सो ब्राह्मण ब्रह्म जो बिंदे हर सेती रंग राता प्रभ निकट वसै सबना घट यंतर गुरमुख विर लै जाता नानक नाम मिले वड्याई गुर कै शब्द पछाता श्री राग महला तीजा सहजे नो सब लोच दी बिन गुर पाया ना जाए पढ़ पढ़ पंडित जोत की थके भेखी परम भुलाए गुर भेटे सहज पाया अपनी कृपा करे रजाए पाई रे गुर बिन सहज ना होए शब्द ही ते सहज उपजाए हर पाया सच सोए रहाओ सहजे गाव्या थाए पवै बिन सहजे कथनी बाद सहजे ही भगत उपजै सहज प्यार बैराग सहजे ही ते सुख संत होए बिन सहजे जीवन बाद सहज साला ही सदा सदा सहज समाध लगाए सहजे ही गुण ऊच रह भगत करे लिवलाए शब्दे ही हर मन वसै रसना हर रस खाए सहजे काल विडारिया सच शरणाई पाए सहजे हर नाम मन वसया सच्ची कार कमाए सेवड भागी जिनी पाया सहजे रहे समाए माया विच सहज ना उपजै माया दूजै पाए मन मुख कर्म कमाउणे होमै जलै जलाए जमण मरण ना चूकई फिर आवै जाए त्रेहो गुणा विच सहज ना पाईए त्रै गुण भरम भुलाए पढ़िए गुणिए क्या कथिए जा मुंडो कुथा जाए चौथे पदम है सहज है गुरमुख पल पाए निर्गुण नाम निदान है सहजे सोजी होए गुणवंती साला है आ सच्चे सची सोए भुलिया सहज मिलाए सी शब्द मिलावा होए बिन सहज सब अंध है माया मोह गुबार सहजे ही सोजी पई सच्चा शब्द अपार आपे बख्श मिलायन पूरे गुर करतार सहजे अदिष्ट पछाणिए निरपो ज्योत निरंकार सबना जिया का एक दाता ज्योति ज्योत मिलावनहार पूरे शब्द सलाही है जिसदा अंत न परावार ज्ञानिया का धन नाम है सहज करै व्यापार अनदिन लाहा हर नाम लैन अखुट परे भंडार नानक तोट न आवई दिए।